याज्ञा करामः सर्वबलदारेव अनाति अनंतव देवियनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන්

0: डालना है। ओबे पाउल विनाश करमीन पाउल वाला असमगी ऐति करना पाउल वाला हमद है मर रहत रंडु ऐति करना अंधमीन सिरना पाउल नुबला कोहेद बलान सिरने मनुष्य अंत भरद पतवी में पसक दिया ला देवी अन मास ले किया अन्न अशुद्ध आत्म नुबला के पाउल विनाश करमीन सिरना वा दन्ने सर्पयान के अंधकार आत्म भाग अन्न ඒ අසුත ආත්මවල බලය පාගන්න
1: වේලේ කබකත්

0: खाती हला हे दिलियाली हमाला दिले वेले ई खाती हाले हमाला दिलियाले खाती हला हे के दिलियाला हाले दिले वेले लो असुते बाना खडा वाली बा हे मेने ले थे बा खाती ला दे दे सोए नवतल दिन असुते बाना येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: देखे रामा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हमाला के दियाले हमा तेरे
1: बे दे दे रे बा खाती दा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबर सुदी वेवा स्वामी वास ओबार सी उदाउ करान ने किने कनाट

0: हमाला हे तिलियाली हमाला तिले मेले ई खाती हाले हमाला तिलियाली खातियाला हे के तिलियाना बाहले मेले सियलो असत बाल अडरवाली बाहे मेले थे माखातिला दे सोए नवतल दे अशुद्ध बाल यीशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे माखातिला
0: रे तेरे बे ई हमाला के तिलियाले हमा
1: तेरे बे दे दे नवातिला